ओके जी, ओके जी। और दूसरे अख्तर रवान देखे चूंकि सोखुमाई चिसमुंग रंग खेस्तशी जमुंग स्किन खेस्तशी आज जमुंग पहुसन की जापो शिलासी भी जमुंग रहा और मुंगता खलकू इखा मखा जमुंग नजमुंग हाइस तर रास्त पूसु की आनु बिल्कुल तासुर दबिया वाले शिचिस द इस ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान क्रीम इस्तेमालों जिदागी प्रोडक्ट इस्तेमालों नो इस ना जानसर बिल्कुल जी याद साथ ही आई जिड इन ए इज ना सही शुजी

भाई हाउ आर यू, ये कहाँ से आ गए भाई? माशाल्लाह सुबह हो तो बेस्ट हैं और लाइक यू भाई प्लीज, ये जुबर नवाज एंड प्लीज प्ले जुबेर नवाज एंड सब लिसनर को सलाम एंड स्पेशली सलाम फॉर एड्स मी जुया, स्पेशली सलाम स्पेशल सलाम फॉर यू, अच्छा अच्छा एड्स मी जुया, ओके हाँ मना नजुए समा खुर खुशहाल डेरा जो

और दे देने इलवासी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी अनिल फ्रॉम डी हां भाई जान ने हां से माशाल्लाह चकम देखन रेडियो तम तार लगे ओके खा तार लगे वाले दे चकम देखन या चार कवि नो के तार सर चार के तार वे तो लगे ईशा देर शाम देखना असल के चकम देखन लश फसला डेरा दूसरी अल्फ वजह शाम

सानिया बहुत छोटी लग रही है, इसकी आवाज से पता चलता है रोती तो नहीं है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बोलती है, आए मनाना फ्री देना ना शाड़ी ना शाड़ी। ओके अब्रिदुन को मुतबरक हो जैसा था चिच्चे तब उसी हदों से आबाद उसे पलो नाजवान पर दुआगन की आंसे दियो लेला पमान। बाय बाय चाटा, आई लव यू ऑल, थैंक यू होमोश लिसनर दलो येला पमान और उसमें पखेर।

मराठी। रेठीला गवीस मतलब कोई न शुभ हा मननसी अच्छे भाई आवाज ओके हमारे से खुशहाल से मनाला फ्री और वही ची भाई ओके हमारे से अच्छे भाई गर्मी मनना का खुशहाल से और वाले से हाँ सिस्टम या गर्मी वसला आवाज या कर सो ओके जो ठीक थे सलाम नजमान भाई स्टेड हमासी सानिया ता स्टार ग्रुप ता सा समरमान ला तरफ ना सलाम वालेकुम सलाम से और बोलो अच्छे खुश भाई नैशो तरजी गुरु बाह इन सलाम दूध भाई बुरुसी अच्छे भाई आपके पास आ रहे हैं फिर मनन ची जैसे चिकटकी शिव आए हो फिर सी हब आए हो अस्सलाम वालेकुम भाई जान वेलकम सडी मशी भाई जान अरे दे शाते रसना नो टेंशन कपने जिंदाबाद हमेश खुश रोजान पैंदे बाद भाई नैशो तो रुचि के ना फिर वकार इंशाल्लाह कोशिश को फिर इसरार ने मतुला से बदशे करे मनन ची और देने लवा भाई सानिया अब बेबसी बात करो कि मैं सुनूं कि किसी कि कैसी भाभी हैं बेबी हैं आई एम रुबा मलिक रुबा मलिक चिकन मत करना ओस तक हिरा टाइम खत्म शो हम बेल टाइम बेउ गुल गुल मरे ना शुभ बरकी से बमने ना से और बलवा ऐसे भाई क्या हाल है सब ठीक हैं भाई सानिया कौन हैं मैं इमन फ्रॉम टैंक ओच अतः तो पता नहीं था डॉक्टर प्रोग्राम से राशि करना नखना गुरु बहुत सो तो चाहे मिजोर गुरु कुछ था हाँ उसे खाद उसे आवाज उसे पलूर नाजमान फिर दुआगन की याद से थी दुरी लापमान बाय बाय टाटा एंड लव यू ऑल थैंक यू खामोश लिसनर दुरी लापमान अब अके आटे मो